0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 7 2 V23।
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भुलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकते हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, RESP ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला।

शांपति पादौ पातु दिलमणि पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्य कवचं पुण्यम् अभेद्य वज्र सन्निभम् सर्वरोग भयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः।

0: namaha. Om Mahesha Parapmane namaha. Jagannath namaha. Om Maheshaya namaha. Om Chaya Putraya namaha. Om Sharvaya namaha. Om Shatapuri Radharine namaha. Om Charasthira Swabhavaya namaha. Om Ajanchalaya namaha. Om Nilavaranaya namaha. Om Nityaya namaha. Om Nilanjana Nibhaya namaha. Om Lambaramaya namaha. Om Vidyaya namaha. Om Vijirupaya namaha. Om Virodhadhara Bhumaye namaha. Om Vedaspada namaha. Om Raya namaha. Om Sarogavaya namaha. Om Vipattvapashaya namaha. Om Shravanjaya namaha. Om Rajnamaya namaha. Om Puraya namaha. Om Kurmangaya namaha. Om Kurupinaya namaha. Om Kutta. Om Parhya namaha. Avidyamrashaya namaha. Om Vidyavidyaswarupinaya namaha. Om Ayushyakaranaya namaha. Om Apadumjartraya namaha. Om Vishnubhaktaya namaha. Om Vashine namaha. Om Vividhagamagyatinaya namaha. Om Vijistutyaya namaha. Om Vandhyaya namaha. Om Virupakshaya namaha. Om Krishthaya namaha. Om Vajadavayastaya namaha. Om Vamaraya namaha. Om Jyeshthapatni samyama. Om Shreya namaha. Om Mitapasha. Om Kashpondanashakartraya namaha. Om Pushtika. Om Stutyaya namaha. Om Stotragamyaya namaha. Om Bhaktivashyaya namaha. Om Bhanave namaha. Om Bhanuputraya namaha. Om Bhavyaya namaha. Om Pamanaya namaha. Puntaya namaha. Om Pate namaha. Om Tanuprakashadehaya namaha. Om Tamasaya namaha. Om Asheshajanavandhyaya namaha. Om Visheshaphaladayine namaha. Om Vashikritajaneshaya namaha. Om Pashunam Pataye namaha. Om Khecharaya namaha. Om Khageshaya namaha. Om Hilandaya namaha. Om Kakinyamanasaya namaha. Om Aryagana Stutyaya namaha. Om Veerachatraya namaha. Om Nityaya namaha. Om Nirgunaya namaha. Om Gunatmane namaha. Om Gramayaya namaha. Om Vandaniyaya namaha. Om Dheeraya namaha. Om Divyadehaya namaha. Om Deenartiharanaya namaha. Om Trainyanashakaraya namaha. Om Aryajanaganyaya namaha. Om Namukhraje. Om Shrutanaya namaha. Om Pariposhita Bhaktaya namaha. Om Paravitraya namaha. Om Bhakta Sahishu namaha.
1: बधाई देते हैं थैंक्स गिविंग की अपने क्रिश्चियन भाई बहनों को भी विश देते हैं उनका बहुत बड़ा दिन है तो थैंक यू अभी 6 दिन होगा एक महीना हो गया है और एक टर्की है जो टोरंटो में पार्कडेल एरिया में फ्री घूम रही है कोई कभी कभी दिखाई देती है लोगों को कहीं छुप जाती है तो ये 680 न्यूज वाले जरूर बताते हैं रोज पीटर की इज ऑन द लूज
2: श्री शनि अष्टोत्तर सन नामावली शराय नमः ओम शांताय नमः
1: गिविंग की एक्टिविटीज कर और सबसे बड़ी बात ये है कि आज चला है सभी जगह पे अपनी बता रहे हैं इलेक्शन है तो आपके जो डिबेट हो रहे हैं आप उनको देखो सुनो आप जो सदस्य किस रेस में है कौन से नॉमिनेशन में है तो ये सारा कुछ आपको देखना है करना है सोचना है जानना है तो जरूर जानिए तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम
2: वरणीयाय नमः ओम सर्वेशाय नमः ओम सौम्याय नमः सर्वः ओम सुरलोक विहारिणे नमः ओम सुखासनिस्ताय नमः ओम सुंदराय नमः
1: जी हाँ तो बात हो रही थी कि आपका लॉन्ग वीकेंड है तो आपको अभी थैंक्सगिविंग लॉन्ग वीकेंड है सभी के लिए तो सभी अपने अपने परिवारों के साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ बाहर जा रहे हैं घूम रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं तो आप जरूर एंजॉय कीजिएगा बस एक बात ये है कि आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका जो सबसे बड़ी बात ये है कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का से बचें बहुत बार हम लोग ऐसे दोस्तों मित्रों के वहाँ चले जाते हैं तो फिर जब वो ऑफर करते हैं ड्रिंक का रिश्तेदारों में भी ना नहीं बोल सकते हैं तो फिर बाद में

0: गाड़ी चलाने के लिए। अभी अगर आपका कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार आपके घर आया है और शराब पी लिया, तो फिर आपको उनको अपने घर पे ही रोक लेना चाहिए, या फिर उनको टैक्सी करके भेज दो, या कैसे भी करके आप उनके लिए आप जरूर कुछ ना कुछ करें, उनका लाइसेंस बचाएं। क्योंकि जहाँ पे लाइसेंस के बिना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये जो ड्रिंकिंग है वो उसका फिर वो जो किसी दोस्त मित्र के साथ, रिश्तेदार के साथ जो समय बताया है, उसकी इतनी बड़ी किसी को पेनल्टी पड़ जाए, तो आपको सोचना चाहिए, वर्थ नहीं है। तो आप जरूर इस चीज के बारे में सोचें, और फिर आगे चल करके अपना जो भी डिसीजन है आप लें। तो अगर आपका कोई दोस्त मित्र आपके घर आया है और आपने उनको जरूर आपकी अगर आप ऐसा करते हैं, उनका उनका भला करते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाते हो आप। आइए आपको सुनाते हैं ये गीत, मोहब्बत का खेल।
1: चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था, आंखें खुली हुई

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो उम्मीद रखती हूँ आपको ये गाने पसंद आ रहे होंगे।
1: अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं हैमिल्टन में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर अपनी उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट। ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहां पे। कहां पे? योगीज ऑटो सेंटर। तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं। अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो, या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को। हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-4444, 905-547-6464। योगीज ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है। आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है। तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवाने हैं, ऑयल चेंज करवाने हैं, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और अगर आप अपने घर में फेस्टिव सीजन में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनके ग्वाल्फ में है। तो आप के लिए अगर आपने टीवी लेके देना है, किसी को दिवाली गिफ्ट लेके देना है, तो आप आज ही उनको कॉल कर लीजिए। छोटी सी किचनेट सेटअप करवानी है 905-799-0045, 5799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हो।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ, ਪਿਸਤਾ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਔਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026। 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1850 ਐਲਬਨ ਰੋਡ, ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1165।
1: जी हाँ, तो हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं 11 अक्टूबर से इस हफ्ते, तो उनको भी बहुत सारी बधाई हो। और साथ साथ ये भी है कि सभी मंदिरों में जागरण हो गए, चौकियां होंगी और बहुत ये जो दिन होते हैं वो जो होते हैं बहुत बढ़िया दिन होते हैं। तो आप जरूर अपनी माँ के आशीर्वाद पाइएगा, जरूर जाइएगा जहाँ जहाँ भी आपको टाइम मिले। जहाँ पे सभी लोग नौकरियाँ करते हैं तो बस फिर भी टाइम लोग निकाल लेते हैं। बड़ी बड़ी चौकियाँ होती हैं, बड़े बड़े जागरण होते हैं, लोगों में बड़ी श्रद्धा है, बड़ी भावना है। तो आपको मंदिर में जा सकते हो और सभी मंदिरों में प्रोग्राम बहुत बढ़िया बढ़िया बनाए जाएंगे। और अभी महाउत्सव सीजन है तो आप जरूर इसमें शामिल होइए, क्योंकि जब आप वहाँ पे जाते हो तो आपको बहुत बढ़िया महसूस होता है, बहुत बढ़िया फीलिंग आती है जब आप कम्युनिटी में जाते हो, कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो। चाहे आपको आपके दिमाग में कितनी उदासी हो, परेशानी हो, क्योंकि हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो इसलिए आप थोड़ा इस गम को भुलाने के लिए, दुख को भुलाने के लिए जरूर बाहर निकलें, कम्युनिटी में शामिल हो जाएं।
0: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती है, तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूले। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतली बॉक्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458.
1: जी हाँ, तो अगर आप लंदन के आसपास के इलाके में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि मास्टर क्लीन डिपो गोर रोड पे मौजूद हैं। तो आपको किसी तरह के भी कार वैन ट्रक का आपको कोलिजन का काम करवाना है तो आप masterclisiondepot.com पर जाइए और उनकी सेवाएं लीजिए। बहुत आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए बना देते हैं, तो मास्टर क्लीजन डिपो। अब अगर आपने मूव होना है तो आपके लिए HK मूवर्स कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं, तो आप उनकी सेवाएं जरूर लीजिए। तो आप HK मूवर्स को कॉल कर लीजिए 416-524-4 पे आप उनको कॉल कर सकते हो।
0: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती है, तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूले। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतली बॉक्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। अगर आपने अभी प्रोग्राम शुरू किया है तो आपको बताते चलें कि अभी नवरात्र जो है शुरू हो रहे हैं 11 अक्टूबर से, शारदीय नवरात्र। आइए सुनिए ये गीत, बहुत प्यारा सा गीत।
2: किसी रोज तुमसे
1: प्रदेश करो।

है मैं शामिल हूँ तेरा, तू मेरी गजल है बड़ी बेकरारी, मुझे आजकल है बड़ी बेकरारी।

Maybe you're meant to be. Maybe it's hard to hold me. You're gonna come on my journey. You're but it's hard to hold me. जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना है तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स की दिवाली सेल्स का स्पेशल फायदा उठाइए। और टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप topchoiceelectronics.com पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पर आप कॉल कर सकते हो। हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप। इत्थे ही हैमिल्टन विच साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तो लेके 1,00,000 डॉलर तक। तो फाइनेंस की चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू। हर तरह के क्रेडिट वाले कस्टमर्स लिए फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जे तुम हैमिल्टन में लोकल रहते हो तो साढ़े को आओ, साड़ी लोकल टीम थोड़ी सिचुएशन के हिसाब नाल सब तो वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। जे तुहानू नवे टायर की लोड है तो वह भी मिलेंगे। चार टायर का सैट सिर्फ 299 तो शुरू। हुण सुनो AM530 लिसनर्स लई खास ऑफर, जल्द तुसी बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन आओ। सानू सिर्फ ये दसो, मैं AM530 ते मीरा शर्मा तो तुहाडे बारे सुनिया है, पते तुहानू मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, 500 की सीधी बचत। तो फिर देर किस गल की, अज ही विजिट करो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन। कॉल करो 365-384-3340, दोबारा सुनो 365-384-3340। बीवीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। जी हाँ, आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। अब अगर आपने मूविंग होनी है तो HK मूवर्स को आप कॉल कीजिए। HK मूवर्स कनाडा भर में मूव करने में आपकी मदद करते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि उनके बहुत सारी टीम्स हैं तो बहुत बढ़िया सर्विसेज आपको देते हैं। तो आज ही ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-704 416-524-6704। आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आप लंदन में रहते हो, आप बहुत ही खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कलेक्शन डिपो वाले खुल चुके हैं गोर रोड पे। तो वहाँ पे आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी। आप जानकारी के लिए आप जाइएगा mastercollisiondepot.com और फिर आप कॉल कर लीजिएगा उनको। तो और आपको आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं मास्टर कलिजन डिपो वाले। तो अब अगर आपने खाना ऑर्डर करना है बढ़िया क्वालिटी का, आपको लाइव कुकिंग चाहिए तो न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट आपके लिए ब्रिटानिया क्रेडिट भी पे मौजूद है। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो पहले से, मिठाइयाँ करवा चौथ के लिए, दिवाली के लिए बुकिंग कर लो 905-814-1703 905-814-1703 पे कॉल कीजिएगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो आइए आपको

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है खैर संसार में। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, और आपको बता दूं कि अगर प्रोग्राम आपने अभी ऑन किया तो नवरात्रि, जो शारदीय नवरात्रि है, वो 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं। तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैमिल्टन वासियों की तुम अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अजे पहुंचो बीबीटी रॉकले फाटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तों लैके 1,00,000 तक। ते फाइनेंसिंग दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तों शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। ते दूसरे हैमिल्टन विच रहिंदे हो तां साडे कोल साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तों वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानूं नवें टायर दी लोड है तां ओह वी मिलणगे। चार टायर का सेट सिर्फ 299 तो शुरू। हुण सुनो AM530 लिसनर लई खास ऑफर, जदों तुसीं बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन आओ, सानूं सिर्फ ये दसो मैं AM530 तो मीरा शर्मा तो तुहाडे बारे सुनिया है, अते तुहानूं मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, $500 की सीधी बचत। तो फिर देर किस गल दी, अज ही विजिट करो बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन। कॉल करो 365-384-3840, दोबारा सुनो 365-384-3840। बीबीटी रॉकले फाटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। अब मेरी कोशिश है कि लॉन्ग वीकेंड है तो आपके लिए ये प्रोग्राम जितना मनोरंजक बना सकूं, जितने बढ़िया बढ़िया गीत आपको निकाल के वो आपको सुनाऊं, ताकि आपका जो शाम का टाइम है, आप कहीं जा रहे हो तो ये प्रोग्राम सुनते जा रहे हो। तो मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ, बहुत सालों से प्रोग्राम कर रही हूँ तो आपका साथ मिल रहा है, तो आप क्यों ना मैं आपका मनोरंजन करूँ बढ़िया तरीके से। तो ये गाना भी बड़ा अच्छा है, आशा भोसले की है, ऋषि कपूर और पूनम, 80s के जमाने में आपको ले चलती हूँ। ये बाजा रहा पूनम।

एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत दा भला। तो अब जाते जाते पंजाबी का तड़का लगाने वाली हूँ। तो आपके लिए लॉन्ग वीकेंड है तो बढ़िया बढ़िया म्यूजिक आपको रोमांटिक सा म्यूजिक आपके लिए सुनाया है। तो आइए आपके लिए दिलजीत दोसांझ का गीत हो जाए तो क्या बात है। तो जरूर आप पसंद करेंगे उनका उनके बहुत सारे नए। तो एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर नया टीवी लेना है तो आप चाहिएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। मूव करना है तो एच के मूवर्स का नाम मास्टर कोलिजन डिपो है। और अगर आपने मिठाइयाँ ऑर्डर करनी है करवा चौथ दिवाली के लिए तो आपके लिए समोसा एंड स्वीट पैस्ट्री मौजूद है। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने स्वादा भला। हैव ए सेफ वीकेंड एंड एंजॉय।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट

स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे आइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5500 पर कॉल कीजिए 9054567733 alpha optical। योर विजन इज योर बिजनेस।

सर्वेशा नमः ओम शनैश्चराय नमः ओम शांताय नमः ओम सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः ओम शरण्याय नमः ओम वरेण्याय नमः ओम सर्वेशाय नमः।

0: बधाई देते हैं थैंक्सगिविंग की अपने क्रिश्चियन भाई बहनों को भी विश देते हैं उनका बहुत बड़ा दिन है तो थैंक्सगिविंग होगा। एक महीना हो गया है और एक टर्की है जो टोरंटो में पार्कडेल एरिया में फ्री घूम रही है, कोई कभी कभी दिखाई देती है लोगों को, कहीं छुप जाती है। तो ये 680 न्यूज वाले जरूर बताते हैं रोज की टर्की इज ऑन द लूज।
1: श्री शनि अष्टोत्तर सतनामावली शराय नमः ओम शांताय नमः।
0: गिविंग की एक्टिविटीज कर और सबसे बड़ी बात ये है कि आज चला है सभी जगह पे अपनी बता रहे हैं इलेक्शन है, तो आपके जो डिबेट हो रहे हैं आप उनको देखो सुनो, आप जो सदस्य किस रेस में है कौन से नॉमिनेशन में है, तो ये सारा कुछ आपको देखना है करना है सोचना है जानना है तो जरूर जानिए। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम
1: वरणीयाय नमः ओम सर्वेशाय नमः ओम सौम्याय नमः सर्वः ओम सुरलोक विहारिणे नमः ओम सुखासनिस्ताय नमः ओम सुंदराय नमः।
0: जी हाँ, तो बात हो रही थी कि आपका लॉन्ग वीकेंड है तो आपको अभी थैंक्सगिविंग लॉन्ग वीकेंड है सभी के लिए, तो सभी अपने अपने परिवारों के साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ बाहर जा रहे हैं घूम रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, तो आप जरूर एंजॉय कीजिएगा। बस एक बात ये है कि आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका जो सबसे बड़ी बात ये है कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का से बचें। बहुत बार हम लोग ऐसे दोस्तों मित्रों के वहाँ चले जाते हैं तो फिर जब वो ऑफर करते हैं ड्रिंक का, रिश्तेदारों में भी ना नहीं बोल सकते हैं, तो फिर बाद में गाड़ी चलाने के लिए भी, अगर आपका कोई दोस्त इधर रिश्तेदार आपके घर आया है और पी लिया, तो फिर आपको उनको अपने घर पे ही रोक लेना चाहिए, या फिर उनको टैक्सी करके भेज दो, या कैसे भी करके आप उनके लिए आप जरूर कुछ ना कुछ करें, उनका लाइसेंस बचाएं, क्योंकि जहाँ

0: आइए आपको सुनाते हैं ये गीत मोहब्बत के चुलम।
1: चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है,
0: मोहब्बत
1: प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो उम्मीद रखती हूँ आपको ये गाने पसंद आ रहे होंगे।
1: अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं हैमिल्टन में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर आप अपनी उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट। ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहां पे। कहाँ पे? योगीज ऑटो सेंटर। तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं। अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो, या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को। हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-4 905-547-6464। योगीज ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है। आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है। तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवाने हैं, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और अगर आप अपने घर में फेस्टिव सीजन में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके

ये इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनके ग्वाफ में है। तो आप के लिए अगर आपने टीवी लेके देना है, किसी को दिवाली गिफ्ट लेके देना है, तो आप आज ही उनको कॉल कर लीजिए। छोटी सी किचनेट सेटअप करवानी है, 905-799-0045 9579900045 पे आप उनको कॉल कर सकते हो।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तो आते इन्ने सालां दे परोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन से 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स उन तीन लोकेशंस तो सर्व करते ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1150 416-213-1165।
1: जी हाँ, तो हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं 11 अक्टूबर से इस हफ्ते, तो उनको भी बहुत सारी बधाई हो। और साथ साथ ये भी है कि सभी मंदिरों में जागरण हो गए, चौकियां होंगी और बहुत ये जो दिन होते हैं वो जो होते हैं बहुत बढ़िया दिन होते हैं। तो आप जरूर अपनी माँ के आशीर्वाद पाइएगा, जरूर जाइएगा जहाँ जहाँ भी आपको टाइम मिले। जहाँ पे सभी लोग नौकरियाँ करते हैं तो बस फिर भी टाइम लोग निकाल लेते हैं। बड़ी बड़ी चौकियाँ होती हैं, बड़े बड़े जागरण होते हैं, लोगों में बड़ी श्रद्धा है, बड़ी भावना है। तो आपको मंदिर में जा सकते हो और सभी मंदिरों में प्रोग्राम बहुत बढ़िया बढ़िया बनाए जाएंगे। और अभी महाउत्सव सीजन है तो आप जरूर इसमें शामिल होइए, क्योंकि जब आप वहाँ पे जाते हो तो आपको बहुत बढ़िया महसूस होता है, बहुत बढ़िया फीलिंग आती है जब आप कम्युनिटी में जाते हो, कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो। चाहे आपको आपके दिमाग में कितनी उदासी हो, परेशानी हो, क्योंकि हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो इसलिए आप थोड़ा इस गम को भुलाने के लिए, दुख को भुलाने के लिए जरूर बाहर निकलें, कम्युनिटी में शामिल हो जाएं।
0: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती है, तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, क्रश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतली पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6.
1: जी हाँ, तो अब अगर आप लंदन के आसपास के इलाके में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि मास्टर क्लियर डिपू गोर रोड पे मौजूद हैं। तो आपको किसी तरह के भी कार वैन ट्रक का आपको कोलिजन का काम करवाना है तो आप masterclearingdepot.com पर जाइए और उनकी सेवाएं लीजिए, आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए बना देते हैं। तो मास्टर क्लियर डिपो। अब अगर आपने मूव होना है तो आपके लिए HK मूवर्स कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं, तो आप उनकी सेवाएं जरूर लीजिए। तो आप HK मूवर्स को कॉल कर लीजिए 416-524-4162-4-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हो।
0: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती है, तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतली पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है कार संसार में। अगर आपने अभी प्रोग्राम शुरू किया है तो आपको बताते चले कि अभी नवरात्रे जो है शुरू हो रहे हैं 11 अक्टूबर से, शारदीय नवरात्रे। आइए सुनिए ये गीत, बहुत प्यारा सा गीत।
2: किसी रोज तुमसे
1: प्रदेश के
2: मुलाकात होगी,
1: बहुत
2: किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये पर

Maybe that was the dream. Maybe it's not the whole dream. जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना है तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स की दिवाली सेल्स का स्पेशल फायदा उठाइए। और टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप topchoiceelectronics.com पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पर आप कॉल कर सकते हो। हैमिल्टन वासियों की तुम अपनी अगली कार लग रहे हो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, अपना लोकल कार डीलरशिप। इतने ही हैमिल्टन विच साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हैं, सिर्फ 5,000 तो लेके $1,00,000 तक। ते फाइनेंस की चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू। हर तरह के क्रेडिट वाले कस्टमर लई फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल हैं। जे तुम हैमिल्टन विच लोकल रहते हो तो साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन के हिसाब नाल तुहाडे लई सब तो वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानू नवे टायर की लोड है तो वह भी मिलणगे। चार टायर का सैट सिर्फ 299 तो शुरू। हुण सुनो AM530 लिसनर लई खास ऑफर, जल तुसीं बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन आओ, सानू सिर्फ ये दसो मैं AM530 दे मीरा शर्मा तो तुहाडे बारे सुनिया है। अते तुहानू मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, 500 की सीधी बचत। तो फिर देर किस गल की, अज ही विजिट करो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन। कॉल करो 365-384-3340, दोबारा सुनो 365-384-3340। बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। जी हाँ, आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। अब अगर आपने मूविंग होनी है तो HK Movers को आप कॉल कीजिए। HK Movers कनाडा भर में मूव करने में आपकी मदद करते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि उनके बहुत सारी टीम्स हैं तो बहुत बढ़िया सर्विसेज आपको देते हैं। तो आज ही ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-4 आप HK Movers को कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आप लंदन में रहते हो, आपको बहुत ही खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कलेक्शन डिपो वाले खुल चुके हैं गोर रोड पे। तो वहाँ पे आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी। आप जानकारी के लिए आप जाइएगा masterkollisiondepot.com और फिर आप कॉल कर लीजिएगा उनको। तो और आपको आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं मास्टर कोलिजन डिपो वाले। तो अब अगर आपने खाना ऑर्डर करना है बढ़िया क्वालिटी का, आपको लाइव कुकिंग चाहिए तो न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट आपके लिए ब्रिटानिया क्रेडिट भी पे मौजूद है। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो पहले से, मिठाइयाँ करवा चौथ के लिए, दिवाली के लिए बुकिंग कर लो 905-814-1703-905-814-1703 पे कॉल कीजिएगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो आइए आपको

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे शुरुआत दा भला। तो अब जाते जाते पंजाबी का तड़का लगाने वाली हूँ। तो आपके लिए लॉन्ग वीकेंड है, तो बढ़िया बढ़िया म्यूजिक, आपको रोमांटिक सा म्यूजिक आपके लिए सुनाया है। तो आइए आपके लिए दिलजीत दोसांझ का गीत हो जाए तो क्या बात है। तो जरूर आप पसंद करेंगे उनका, उनके बहुत सारे नए। तो एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज स्टोव वॉशर ड्रायर नया टीवी लेना है तो आप चाहिएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। मूव करना है तो एचके मूवर्स का नाम का मास्टर कोलिजन डिपो है। और अगर आपने मिठाइयाँ ऑर्डर करनी है करवा चौथ दिवाली के लिए, तो आपके लिए समोसा एंड स्वीट बर्फी मौजूद है। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे स्वादा भला। हैव ए सेफ वीकेंड एंड एंजॉय।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

0: से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है, सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 और 10।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
3: अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
4: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 और 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 9057999400।
5: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
1: मैं हरसिमरन सिंह, साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है, पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहियां ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 और 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर। आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
6: विजिटर टू कनाडा आउट ऑफ प्रोविंस कवरेज बाय करना चाहते हो या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ले सुपर वीजा इंश्योरेंस दे बेस्ट रेट्स, बेस्ट प्लान्स अते बेस्ट ऑप्शन बारे, या फिर 40-45% दा डिस्काउंट लेना चाहते हो तो हुणे कांटेक्ट करो 6474-0088-62।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection callon to chutkara. Bina vyaj nikkiya nikkiya kishtan. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया, क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दंगे वरी ना कर, तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, हेल्पिंग यू टू फुलफिल योर रियल एस्टेट प्लान्स।
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

0: 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है, सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 और 10।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
3: सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
4: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 और 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 9057999400।
5: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
6: मैं हरसिमरन सिंह, साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहियां ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर। आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
4: If you want to know about Supervisa Insurance and their best rates, best plan and best options for your parents and grandparents on 40-45% discount, so contact today 647-400-6862. Harjinder Kul.

0: visitor to Canada out of province coverage buy karna chahne ho ya apne parents ya grandparents liye super visa insurance the best rates best plans at the best option bare ya phir 40 to 45 fees the discount lena chahne ho ta hone contact karo 6474 88 62 647-400-6862
1: garnishment power of sale notice bank walo paise di mang उन्हें ही सानू कॉल करो फिर तो अनु कोई नहीं कर सकेगा तंग कर्जा माफ कराओ 100% मानसिक शांति पाओ कलेक्शन कॉलों तो छुटकारा बिना ब्याज निकिया निकिया किश्ता कॉल करो कनाडा कंज्यूमर क्रेडिट असिस्टेंस 416-502-3100 कर्जे तो परेशान असी करांगे काम आसान 416-502-3100
0: इश्तिहार है तो व्यापार है अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6474-88-62 6474-88-62

0: Above Wedding Store.
1: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा. 30 मेलिनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन. टेलीफोन 905-799-9400.

0: 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है। सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक, चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 और 10।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
3: मैं हरसिमरन सिंह। साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है, पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहीयां ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर आउण वाली 26 अक्टूबर नूं। वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।

0: 7 से 8 तक बनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: मैं हरसिमरन सिंह, साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहियां ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर। आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
3: प्रीमियम ऑटो रिपेयर्स एंड यूज्ड कार सेल्स, गुरप्रीत अड्डा होरां दा फोन नंबर 416-747-6800। किसी भी मेक एंड मॉडल दी गड्डियां दी कोई रिपेयर करवानी है, मिशन टेस्ट करवाना है, प्रोफेशनल ऑटोमोटिव सर्विसेज, इंजन ट्यूनअप, ट्रांसमिशन ट्यूनअप, येलो स्टिकर्स चाहिए ने क्यू वैन्स दे लई, फ्यूल इंजैक्शंस एंड इलैक्ट्रिकल स्पैशलिस्ट, प्रीमियम ऑटो रिपेयर्स, यूज्ड कार सेल्स। हीटिंग एंड कूलिंग दी सर्विसेज दे विच खास मोहरत रखदे आ। सो पहुंचना तुसीं 21 मेलविक ड्राइव, नॉर्थ यॉर्क, गुरप्रीत रड्डा होरी, प्रीमियम ऑटो रिपेयर्स एंड यूज्ड कार सेल्स तों 416-747-6800, 416-747-6800, प्रीमियम ऑटो रिपेयर्स एंड यूज्ड कार सेल्स।

0: songs, ते गपशप द फ्यूजन
1: देसी फ्यूजन
0: स्पोर्ट्स ते सॉन्ग्स द फ्यूजन
1: देसी फ्यूजन
0: सॉन्ग्स ते न्यूज द फ्यूजन
1: तुसी सुन रहे हो देसी फ्यूजन सुनते रहो देसी फ्यूजन
0: ओहो ओ सुनते हो जी आ देखो मेरा लैपटॉप बिल्कुल नहीं चल रहा इतना रुक रुक के चल रहा मैं तो परेशान हो गई हूं
2: तू घबरानी क्यों है
1: मैं आज ही तेरा लैपटॉप लिंकड अप सेलफोन्स एंड कंप्यूटर्स वाले को लेके जाना ओते लैपटॉप बिल्कुल नवा ते सुपर स्पीड वाला कर देंगे लिंकड अप वाले सेम डे फिक्स करके देंदे ने चाहे स्लो चलता होवे स्क्रीन टूट गई बैटरी लॉस चार्जर तो उतार के बंद हो जाता है नो प्रॉब्लम
0: जे तुसी भी अपना लैपटॉप या फोन फिक्स करवाना चाहते हो तो पहुंचो लिंकड अप मिसेस आगा जो दो लोकेशंस ने कॉल 6475100061 ओहो ओ सुनते हो जी आ देखो मेरा लैपटॉप बिल्कुल नहीं चल रहा इतना रुक रुक के चल रहा मैं तो परेशान हो गई हूं
1: तू घबरानी क्यों है मैं आज ही तेरा लैपटॉप लिंकड अप सेलफोन्स एंड कंप्यूटर्स वाले को लेके जाना ओते लैपटॉप बिल्कुल नवा ते सुपर स्पीड वाला कर देंगे लिंकड अप वाले सेम डे फिक्स करके देंदे ने चाहे स्लो चलता होवे स्क्रीन टूट गई बैटरी लॉस चार्जर तो उतार के बंद हो जाता है नो प्रॉब्लम
0: जे तुसी भी अपना लैपटॉप या फोन फिक्स करवाना चाहते हो तो पहुंचो लिंकड अप मिसेस आगा जो दो लोकेशंस ने कॉल 6475100061
3: हां जी दोस्तों मैं थोड़ा दोस्त ते होस्ट नवजोत सिंह ते थोड़ा स्वागत है देसी फ्यूजन रेडियो दे उत्ते ते थोड़ा ते मेरा साथ रहूगा पूरे 3 बजे तक गल्ला बत्ता करांगे कुछ स्पोर्ट्स दियां नाले दवांगे थानू ग्रोसरी ते डीलां नाले थानू दवांगे सेलफोन बारे जानकारी तुसी होम इंटरनेट दे प्लान लेने ने ओदे बारे भी थानू दसांगे सो जुड़े रहना तुसी पूरे 3 बजे तक प्रोग्राम दे मेन स्पॉन्सर्स ने रॉयल इंडिया ग्रोसर्स गोरवे ते कंट्री साइड ते लोकेशन है जिहड़ी 24 घंटे खुली है एवरी डे जिदा कि हुण थैंक्सगिविंग लॉन्ग वीकेंड है मंडे नू बहुत सारे स्टोर बंद होने हैं लेकिन रॉयल इंडिया ग्रोसर्स तुहाडे लई खुला 24 आवर्स सो आपां उत्थे तुसी आ सकदे हो वधिया क्वालिटी वाली ग्रोसरी जिहड़ी हैगी है कर सकते हो मीट लैना नाल तुहानू मीट शॉप भी मिल जाएगी मिठाइयां लैनियां मिठाइयां मिलनगियां जूस लैना तां जूस बार भी उत्थे अवेलेबल है सो रॉयल इंडिया ग्रोसर्स तुसी पहुंचना है 24 आवर्स खुला है गोरवे ते कंट्री साइड ते 905-794-8600

ओके मित्रों, एक गल थोड़े नाल होर करिए कि जे गुरबाणी रेडियो तुसीं लैणा चाहुंदे हो, गुरबाणी रेडियो सारे महंगे हो गए आ, क्योंकि गुरबाणी रेडियो च पैंदी है माइक्रो SD जिहड़ी की हैगी है स्टोरेज। जिद्दण दी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस इन्नी पॉपुलर हुई आ, उहदे विच स्टोरेज यूज़ हुंदी आ ज़्यादा, सो स्टोरेज वालियां सारे चीज़ां महंगीआं हो गईआं। जिद्दां एप्पल ने हर फोन दे प्राइस चक्कते $150-$200 है ना, आईपैड के प्राइस चक के $150-$200। सैमसंग ही एक है जिन्होंने अपने फोन महंगे नहीं किए, बाकी सारे ने करते। सो जी भी चीज़ स्टोरेज पैंती है, कंप्यूटर लैपटॉप महंगे हो गए, सो गुरबाणी रेडियो भी मार्केट के इस टाइम बहुत महंगे हो गए। लेकिन लिंकड अप स्टोर ते रॉयल इंडिया ग्रोसर्स दोनों ते ही थोनों गुरबाणी रेडियो मिल जाता, 25-1-45-2। किन्ने दा? 25-1-45-2। ग्रोसरी स्टोर तो चकने आ, चाहे तुसीं लैणे आ लिंकड अप स्टोर तो, दोनों जगह अवेलेबल ने। ग्रोसरी स्टोर हैगे आ मिसी सागा च 3050 आर्टीजन ड्राइव के उत्ते, ब्रैम्पटन के 10950 गोरवे ड्राइव के उत्ते। तो जे तुसीं सैलफोन स्टोर से पिक करने आ तां तुसीं पिक कर सकते हो 34 ब्रिस्टल रोड ईस्ट मिसी सागा, या फिर 550 क्वीन स्ट्रीट ब्रैम्पटन के। सो गुरबाणी रेडियो चार लोकेशन से तुहाडे लई अवेलेबल ने। फुटबॉल देखण दे ते जे तुसीं शौकीन हो तां फुटबॉल दे विच प्रीमियर लीग बड़ी टॉप दी इस टाइम चल रही है। मैनचेस्टर सिटी ते वैसे तां लगे होए ने 115 दोष, ते ओह पूरा रौला इस टाइम पिया होया। उन्होंने अपील भी करनी आ उहदी, ते कहिंदे आ कि उन्हां दे पॉइंट डिडक्ट करने आ। लेकिन सिटी दे प्लेयरां ते फैनस नूं, जिहड़े 2-4 फैन उन्हां दे हैगे आ, उन्हां नूं कोई फर्क नहीं। अज्ज उन्हां दा मैच सीगा लिवरपूल दे नाल, ते उन्हां ने पूरा उत्थे आ के रौला रप्पा पाया, ते 3-0 दे नाल लिवरपूल नूं ठोक के हराया। कल आर्सनल का मैच सीगा, बड़े औखे जितते ने 2-1 तो। रियाल मैड्रिड भी कल ला लीगा दे विच 1-0 तो जित गई। दूजा गोल भी करता सीगा विनीशियस जूनियर ने, नाले तां गोल करता डिस अलाउ, नाले विनीशियस जूनियर नूं मिल गया रैड कार्ड, लाल वाला कार्ड, क्योंकि उन्हें दूजे प्लेयर के बाल जिहड़े सीगे खिचते। मैनचेस्टर यूनाइटेड ते टॉटनम हॉटस्पर का मैच सीगा कल, ओह 1-1 नाल होया ड्रॉ। ला लीगा दे विच बारसलोना ने मैच जितया 3-0 तो, वह भी कल सीगा मैच। EPL का टेबल पूरा टाइट चल रहा है इस टाइम, अपनी फेवरेट टीम जी है आर्सनल गनर्स, ये गनर्स वो है दूजे नंबर पर, 115 चार्ज FC हैगी है टॉप पर, जिहड़ी कि हैगी है मैनचेस्टर सिटी। तो जे तुसीं फुटबॉल देखने के शौकीन हो, सॉकर पूरी जोर शोर से चल रही है, तो जे अमेरिकन फुटबॉल देखने के शौकीन हो तो थोड़ा पता अज गेम्स ने, गो बिल्स गो।

इंडस्ट्रियल वेयर हाउस फॉर सेल इन मिसिसागा। हाँ जी, इंडस्ट्रियल वेयर हाउस फॉर सेल इन मिसिसागा। नवजोत सिंह फ्रॉम बिपरेल्टी, मैनू 17 साल हो गए रियल एस्टेट करते, अगले साल अप्रैल च हो जाने 18 साल। सो जे तुसी इंडस्ट्रियल वेयर हाउस लेने आ सेल दे उत्ते, अपने कोल हैगे ऑलरेडी बने हुए ने, 3 डिफरेंट साइट्स हैगिया ने, कुछ हाईवे 401 दे नेड़े ने, कुछ हाईवे 403 दे नेड़े ने, इन मिसिसागा। 2000 स्क्वायर फिट तो लैके 10000 स्क्वायर फिट तक दीयां ऑप्शनस अवेलेबल ने। जे तुसी अपने मूव इन होने दे लई लैणा वेयर हाउस, ते तुहाडा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ते बिजनेस दे वधिया फाइनैंशियल ने, तो 90% तक थोनू फाइनैंसिंग भी मिल सकती है। उहदे लई तुसी टैक्सट मैसेज भेजना वेयर हाउस, थोड़े बिजनेस का नाम, तो किन्ने स्क्वायर फिट चाहिए। नंबर टैक्सट करन दे लई 6477662600।

ओके मित्रों, 2:54 हो गए, पता ही नहीं लग्या। टेम्परेचर बाहर हैगा 17 डिग्री, ते ट्रैफिक हो रहा पूरा जाम क्योंकि पै रहा थोड़ा जहा मी। एनीवेज अपना प्रोग्राम चलता है एवरी संडे दोपहरे 2 to 3 तक AM 5:30 ते नाले टिकटॉक ते लाइव। टिकटॉक से तुम्हें मैंने बाद चो भी कोई मैसेज करना था द किंग नवजोत सिंह। टिकटॉक इंस्टाग्राम यूट्यूब तिना का मेरा सेम अकाउंट है। मैं अमेजोन बारे वीडियो पाना रहना, ऑनलाइन बिजनेस कि कर सकते हो बारे वीडियोज इनफॉर्मेशन अपना फ्री च पाई दी आ। किसी का कोर्स कूर्स नहीं लैना तुमने। रेडियो तो गाने शाने सुनने, कमेंट कर सकते हो टिकटॉक से कहड़ा गाँव सुनना आपे ला देंगे। एडवरटाइजमेंट तुम्हें करनी है, जे तुम टॉप के बंदे हो ऑनेस्टी काम करोगे तो थोड़ी एक बार फ्री च एडवरटाइजमेंट भी करूँगा अपने स्टोर के अपने रेडियो के उत्ते। मैं टिकटॉक से रीच आउट कर लेना द किंग नवजोत सिंह। स्पैशली जे तुम इंश्योरेंस ब्रोकर हो, थोड़े को होम या ऑटो इंश्योरेंस तुम करते हो वधिया करके दोगे कस्टमरस की, तो अपने को टिकटॉक के उत्ते आप अनाउंस किया ऑलरेडी कस्टमर आ गए थे। सो जे तुम ऑनेस्टी काम करना है तो मैं वो टिकटॉक के उत्ते रीच आउट कर लियो। सैलफोन तुम्हें ठीक करवाना, सैलफोन के तुम टॉप के प्लैन लेने आ। इंडिया जाने के लिए थोड़ा सिम कार्ड चाहिए, गारमिन के GPS चाहिए ने, ब्लू पैरट के हैडसैट चाहिए ने, एयरपॉड चाहिए ने, फोन चाहिए ने कैश डील के उत्ते। तो सारिया चीज़ा मिलती ने लिंकड अप स्टोर के उत्ते। फोन नंबर 6475100061 ओकविल दे विच तुसी घर बनाउणा ढा के इनवैसटमेंट के लिए या परसनल रहण के लिए, उहदे विच मेरी टीम तुहानू हैल्प कर सकती है। बिप रियल्टी ब्रोकरेज 6477662600 इंडस्ट्रियल वेयरहाउस असीं सेल ते लैणे आ मिसिस आगा दे विच, उहदे लई 90% तक की फाइनैंसिंग भी अवेलेबल है, उहदे लई भी तुसी कॉल कर सकदे हो 6477662600। टोरोंटो डाउनटाउन लैजलीविल एरिया दे विच जे तुसी कमर्शियल ते रेजिडेंशियल रेंटल प्रॉपर्टी देख रहे हो, क्वीन स्ट्रीट दे उत्ते अपने कोल बहुत वधिया लिस्टिंग हैगी आ, जिथे थोनू वेंडर टेक बैक मॉर्गेज भी मिल सकती है अप टू 80%। सो उहदे च तुसी इंटरस्टिड हो मिलियन डॉलर की रेंज दे विच थोनू प्रोडक्ट मिल जाएगा। कमर्शियल ऑन क्वीन स्ट्रीट इन लैजलीविल एरिया, नाले रेजिडेंशियल, नाले तुसी इहदे च लेनवे होम बना के होर इनू इनवैसटमेंट अपने बड़ी भी कर सकते हो, वो भी कॉल करनी है 6477662600। खाण पीण का समान लेना, तुसी मच्छी लेनी है, मुर्गा लेना, वैजीटेरियन समान लेना, नराते चल रहे हैं ऑबवियसली। ग्रिल क्लब एंड मीट शॉप इन ब्रैम्पटन गोरवे के कंट्री साइड से 9057948600 905 794 8600। इस तो अलावा तुसीं लैनी है टॉप दी ग्रोसरी। ग्रोसरी जदों बंदा करन जांदा ना अजकल उहदे दिमाग च सिर्फ इक्को गल हुंदी है कि हाए एक्सपायरी डेट तो नहीं चेंज होगी, हाए माड़ा समान तो नहीं मिल रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं, पुराना प्रोड्यूस तो नहीं मिल गया ना, दुध ताज़ा आ, सारा कुछ अवेलेबल है। हाँ जी, आपां समान रखी दा स्टोर च लिमिटेड तां कि सोल्ड आउट हो जाए, दुबारा दुबारा भरना पवे क्योंकि फ्रैश आपां अपने कस्टमर दे लई लैके आउणा। सो तुसीं टॉप दा प्रोड्यूस लैणा आ, क्वालिटी प्रोड्यूस जिन्हों कहने कि देख के रूह खुश हो जाए, तो रॉयल इंडिया ग्रोसर से असीं जाना आ। 24 hours ओपन है, गोरवे ते कंट्री साइड दे उत्ते अवेलेबल है। राइट, दुध लेना तुसीं, सील टेस्ट लेना अवेलेबल है, नीलसन लेना अवेलेबल है। जे तुसीं जर्जी गां दा या मझ दा फ्रैश दुध लेना, उहदे लई भी स्टोर दे अंदर मशीन लगी है, 24 hours स्टोर खुला है गोरवे ते कंट्री साइड दे उत्ते। प्राइसिंग तुहानू टॉप दी मिलनी है, क्वालिटी तुहानू टॉपम टॉप टॉपम टॉप। रॉयल इंडिया ग्रोसर्स इन ब्रैम्पटन। जे तुसीं लेनी है वधिया ते घेंट मिठाई तां द खोया कैफे, द खोया कैफे 6474800 42 482 0003। थोनू टॉप दी मिठाई मिलनी है, इन हाउस बनी ब्रैम्पटन दे विच, बेस्ट मिल्क केक इन पूरे कैनेडा हैंड्स डाउन। आओ एक बार टेस्ट करो फिर ऑर्डर प्लेस करो 6474820003। थोड़ा ते मेरा साथ अज लई सीगा एना ही, अगले हफ्ते फिर मिलांगे 2 बजे पूरे संडे नू। उदों तक रब रखा, सत श्री अकाल।

0: हाँ जी हरमन जी।
1: अरे हाले ताई कोई फर्क नहीं पिया।
0: फर्क जे पै गया दिलां विच नी फिर तू रोवेंगी।
1: मैं क्यों रोऊंगी?
0: ए फर्क नहीं पैना चाहिदा फिर के दे कपड़े धोवेंगी।
1: दिल दा कपड़ा ना की सबन।
0: मैं तो रंग दी गल करदा भी भाई चंगा साबण वरत्या करो।
1: हाँ।
0: माड़े साबण रंग उड़ जांदा।
1: ओ जेड़ा गुरप्रीत संधा वालिया वरतदा छोकरा मारका ओ नहीं वरतना।
0: हाँ जी।
1: अच्छा जी, ये कपड़िया दे रंग उड़े दा ही नतीजा कि अज इदा दा हो गया।
0: हाँ जी
1: हाँ जी
0: हाँ जी।
1: चलो मैं तुहानू फिर अज गल सुनानी आ।
0: दसो।
1: कहिंदे कि जिहड़ियां बादल सरकार दीआं नीतियां ना।
0: बादल सरकार दीआं नीतियां पहिलां मैनूं इह दसो भी है किहड़ियां।
1: चलो जिहड़ियां भी आ।
0: ना इदां थोड़ा हुंदा, जिहड़ियां किहड़ियां दा की मतलब है?
1: देखो उहनां ने
0: समझाओ ना पहिलां।
1: की समझावां
0: भई? साडे पल्ले तां पाओ।
1: जिन्निया भी नीतियां ने
0: जी,
1: उन्हां दा प्रचार पता हुण कौन करूगा?
0: कौन करू?
1: सनी देओल।
0: सनी लियोन?
1: सनी लियोन नी, सनी देओल।
0: अच्छा।
1: अपना वो जड़ा नलके आला
0: धर्मेंद्र भाई दा मुंडा
1: वड्डे आला।
0: वड्डे आला?
1: हां ते
0: यार वैसे मेनू पता लग गया भी सनी देओल कोलों क्यों मशहूरी करावनी है।
1: क्यों?
0: ओ इस करके कहंदे भी पंजाब च पानी दा थल्ले चली गई।
1: अच्छा।
0: नलके पानी कढ देनी, नाले नलके पटा लांगे, नाले प्रचार करा लेंगे जी।
1: एक होर भी है लिस्ट च।
0: ओदी लिस्ट दा फेसना हो, पहला गाना सुनना ही नहीं तां मैं रो पैना जी।

0: हाँ हरमन कौरी
1: हाँ
0: दस
1: मैं देख तेरी इस गल ना सीरियसली लग गई है
0: हाँ.
1: तू एवे कर जेडे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स नहीं होंदे
0: प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर
1: हाँ
0: मतलब ये कि भी आपके बच्चे को जब समर कैंप पे जाना है तो क्या क्या चीज चाहिए है फार्मस चाहिए है बैग चाहिए दस्ताने चाहिए कोटी ऐसे मेरी गल सुनो
1: हाँ.
0: ये काम मैं करूंगा तो मतलब बच्चे की मां भी करूंगी फिर
1: भाई साहब जब बच्चे की मां नहीं करना तो उन्हें तेनू की करने रखना है
0: यार किद्दां दी मां हो गई जेड़ा अपने बच्चे दा चा नहीं करन दई ते ओ मेरे गा ऑर्गेनाइजर लभदी फिरूगी उत्थे
1: हेलो
0: नाले एक पॉइंट हेलो एक्सक्यूज मी
1: हां
0: जेड़ा ओदा मेन ऑर्गेनाइजर ओ किधर गया
1: जिन्हें
0: बच्चा ऑर्गेनाइज किया पहले
1: एक्सक्यूज मी
0: पापा जी
1: थोड़ा ध्यान ना
0: हो वही मैं कह रहा ना
1: पापा जी कितना का काम करते होंगे ने दसी जरा मैं
0: पापा में कुछ भी दे दे ये थोड़ा
1: लेडीज ऑलवेज बच्चे भी देखन काम भी देखन घर भी देखन डॉलर भी देखन सारा कुछ देखन है लो
0: मैडम तू ना बीबी दी साइड ना जा मेरे वाली प्रोफेशन ते आ जवाक पाड़ दे बाद अगले पैसे ना देने फिर कौन जिम्मेवार
1: सिर जरूर पाड़ सकता बाकी गल्लां दी
2: गल्लां मेरे नाम जी मेरा बिजनेस नहीं जे चलता बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख ले ने कोई गल नहीं बनती बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो
3: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहा है देव तातले नू कॉल कर रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल फोन कर 416-677-0609 416-677-0609

0: गाल दास, तू अपनी पहली गर्लफ्रेंड क्यों छोड़ दी?
1: ओए पागल सीगी।
0: क्यों?
1: ओनू मैं फोन करना, उन्हें फोन चुकने की बजाय बादरी जी ने रिंगटोन ते नची जाना।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट